0: हम एक दूसरे को करीब 3 साल से जानते हैं।
1: हाँ, करीब 3 साल से।
0: और ये 3 साल मेरी जिंदगी में सबसे हसीन साल था।
2: मुझे लगता है हमारे बीच एक खूबसूरत रिश्ता है।
1: राज, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है?